हम तुम स्यों जोरी, तुम स्यों जोर अवर संग तोरी। जालों ऐसी रीतम जित मैं प्यारा विसरे, नानक साई भली रीत जित साहिब सिती पत रहे।

ơi, Matika Yatupe Swami Manasaki Gatehi Asikate Bhut Kamavade Antana Paravar हर कृपा करके बख्श ले हो हों वड पापी गुनहगार सतनाम श्री वाहे गुरु साहेब जी।

0: वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।
1: एको ओंकार सतनाम करता पुरख निरभउ निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सैभं गुरु प्रसाद

बेसुमार अथाह अगणत अतुलै ज्यों बुलावो त्यों नानक दास बुलै, ज्यों बुलावो

सदा कुर्वान् किता गुरुवेटः स्नियाय वडयन्यम् कह नानक सुनहो संतो शब्द तरु प्यारो सच नाम मेरा धारु वाजे पन शब्द तुद कर सुपागे शब्द वाजे कला जित करता रियम पंत

उत्तर सकल सूर उखरो दा पुत्र सुनी सच्ची वाणी संत साजन पे सर से पूरे गुरु ते जानी सुनते पुनीत कहते पवित्र सत गुरु हे आ पर पूरे

एक ओंकार वाहिगुरु जी की फतेह। श्री भगवती जी सहाय। वार श्री भगवती जी की बात। सहदस में प्रथम भगवती

ज्ञान्द्र जियो सब के जाला सब तेरे बस तेरा कृपला तेरे कर आनंद बधाई तुत कर मान मता तेज अपना आप जर सर्व कला भरपूर तिसे जत कता।

बोले हारी कुदरत वस्या तेरे अंतना जाई लिख रहा जात मैं जोत जोत मैं जाता कल कला प्रभु रहा तू सच्चा साहिब सिफत सवाल जिन की।

सुके काष्ट हरया रहौ जनन पिता लोक सुत बैंता कोए ना किसकी तरया सिर से रिजक समाहे ठाकुर काहे मन पौ करया ऊडे ऊड़ आवे सैकों सा तिस पाछी बचरे छरया तिन कवण खलावे कवण चुगावे मन में ही सिमरन करया सब निदान दस अष्ट सिदान ठाकुर कर तल त्रया जन नानक बल बल सद बल जाइए तेरा अंत ना पारा ब्रया सब निधान दस अष्ट सिधान ठाकुर कर तल त्रया जन नानक बल बल सद बल जाइए तेरा अंत ना पारा ब्रया राग आसा महला चौथा सो पुरख इक ओंकार सतगुर प्रसाद सो पुरख निरंजन हर पुरख निरंजन हर गम्मा गम्मा पारा सब त्यावहि सब त्यावहि तुद जी हर सच्चे सिरजनहारा सब जी तुम्हारे जी तू जिया का दातारा हर त्यावह संतो जी सब दुख विसार नहारा हर आपे ठाकुर हर आपे सेवक जी क्या नानक जंत विचारा तू घट घट अंतर सर्व निरंतर जी हर एको पुरख समाणा एक दाते एक पेखारी जी सब तेरे चोज बिडाणा तू आपे दाता आपे भुगता जी हो तुद बिन अवर ना जाना तू पार ब्रह्म बेअंत बेअंत जी तेरे क्या गुण आख वखाणा जो सेव है जो सेव है तुद जी जन नानक तिन कुरबाणा हर त्यावहि हर त्यावहि तुद जी से जन जुग में सुखवासी से मुक्त पाए जैन हर त्याया जी तिन टूटी जम की फांसी जिन निरभौ जिन हर निरभौ त्याया जी तिन का भौ सब गवासी जिन सेवया जिन सेवया मेरा हर जी ते हर हर रूप समासी से धन जिन हर त्याया जी जन नानक तिन बल जासी तेरी भगत भंडार जी भरे बेअंत बेअंता तेरे भगत सलाहन तुद जी हर अनेक अनेक अनंता तेरी अनेक करें हर पूजा जी तप तापहें जपहें बेअंता तेरे अनेक पढ़ें बहु सिमरत शास्त्र जी कर किरिया खटकर्म करंता से भगत भले जन नानक जी जो भावें मेरे हर भगवंता तू आद पुरख अपरंपर करता जी तुद जेवड़ अवर ना कोई तू जुग जुग एको सदा सदा तू एको जी तू नहि चल करता सोई तुद आपे भावै सोई वरतै जी तू आपे करहें सो होई तुद आपे सृष्ट सब उपाई जी तुद आपे सिरज सब गोई
जन नानक

सर्वठोर मोहो सहाई दुष्ट दोखते लेहो बचाई। सवैया पाए गहे जबते तुम्हारे तबते को आंख तरे नहीं अन्यो राम रहीम प्राण कुरान अनेक कहे मत एक ना मान्यो सिमरत शास्त्र वेद सभाए बहु भेद कहे हम एक ना जान्यो श्री असपान कृपा तुम्हारी कर मैं ना कह हो सब तो हे बखाने दोहरा सगल द्वार को छाड़ के गए हो तुम्हारो द्वार बाही गहे की लाज अस गोविंदास तुहार सगल द्वार को छाड़ के गए हो तुहारो द्वार।

राम कली महला तीजा अनंत एक ओंकार सतगुर प्रसाद आनंद पाया मेरी माए सतगुरु मैं पाया सतगुरता पाया सहज सेती मन वजियां वाधाइया राग रतन परवार परिया शब्द गावन आइया शब्दो तंगावो हरी केरा मन जिनी वसाया कहे नानक आनंद होआ सतगुरु मैं पाया ए मन मेरिया तू सदा रहो हर नाले हर नाल रहो तू मन मेरे दुख सब मसारणा अंगीकार ओह करे तेरा कारज सब सवारणा सबना गल्ला संब्रत स्वामी सो क्यों मनो विसारे कहे नानक मन मेरे सदा रहो हर नाले साचे साहेबा क्या नाही घर तेरा घर दा तेरा सब किच है जिस देह सो पावे सदा सिवत सलाह तेरी नाम मन वसावे नाम जिनके मन वसिया वाजे शब्द कनेरे कहे नानक सच्चे साहिब क्या नाही घर तेरा सच्चा नाम मेरा आधारो सच नाम आधार मेरा जिन भुखा सब गवाइया कर शांत सुख मन आए वसिया जिन इच्छा सब पुजाइया सदा कुर्बान कीता गुरु विटहो जिस दिया एह वडियाइया कहे नानक सुनो संतो शब्द तरो प्यारो सच्चा नाम मेरा आधारो वाजे पंच शब तित कर सुभागे कर सुभागे शब्द वाजे कला जित कर तारिया पंच दूत तुद वस कीते काल कंटक मारिया तुर कर्म पाया तुद जिनको से राम हर के लागे कहे नानक तै सुख होआ तित घर अनहद बाजे आनंद सुनो बड भागी हो सगल मनोरथ पूरे पर ब्रह्म प्रभ पाया उतरे सगल बसुरे दुख रोग संताप उतरे सुनी सच्ची बाणी संत साजन पए सरसे पूरे गुर ते जानी सुनते पुनी कहते पवित सतगुर रहा पर बुरे

मंदामणी महला पंजवां थाल विच तिन वस्तु पईआ सत संतोख विचारो अमृति नाम ठाकुर का पयो जिसका सबसे आधारो जेको खावे जेको पुंचे तिसका होए उदारो एहे वस्त तजी नहीं जाई नित नित रख उर तारो तम संसार

बोलो जी वाहे गुरु, एक ओंकार वाहिगुरु जी की फतेह। श्री भगवती जी सहाय वार, श्री भगवती जी की पातशाही दसवीं। प्रथम भगवती सिमर कै गुरु नानक लई ते आए, फिर अंगद गुरते अमरदास रामदासवी सहाय। अर्जन अर गोबिंद नो सिमरो श्री हर राय, श्री हर कृष्ण ते आई।

एक ओंकार सतगुरु प्रसाद ऐसा महला चौथा शंत कर चौथा तन तन साहिब श्री गुरु।

कच्चुहु कंचन पयो, शबद गुर श्रवण सुनियो, बिखते अमृत होयो, नाम सत गुरमुख पण्यो, लोहो होयो लाल, नदर सत गुर जद तारे, पाहण माणक करे, ज्ञान

गुरु बिन कूर अंधार, गुरु बिन समझ न आवे, गुरु बिन सुरत न सिद्ध, गुरु बिन मुकत न पावे, गुर कर सच विचार, गुरु कर रे मन मेरे, गुर कर

हर मन तरो ध्यान अहनस करो बचन गुर हृदय तर फुन गुरु जल बिमल अथाह मजन करो संत गुर सिख तरो नाम।

0: कोड़ राजा कोड़ प्रजा कोड़ सब संसार कोड़ मंडप कोड़ माड़ी कोड़ बैसनहा कोड़ सोयना कोड़ रूपा कोड़ पैननहा कोड़ काया कोड़ कपड़ कोड़ रूपया पार कोड़ मियाँ कोड़ बीबी खप होए खार कोड़ कोड़े नि हो लगा बिसरिया करतार किस नाल की जय दोस्ती सब जग चलनहार कूड़ मिठा कूड़ माख कूड़ उबे पू नानक बखाने बेनती तुदवाच कूड़ कूड़ महला पहला
1: सचता प्रजानी है जद सचा होवे कूड़ की मृत रतन।